0: Time Check is brought to you by AGS Tubular Battery hai to dil ko hai aaram. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
1: Kisi bhi insaan ke liye sabse ahem hoti hai uski sehat.
2: Kisi bhi shakhs ko dekh ke uski sehat ke bare mein andaaze na lagaye.
1: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
3: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
2: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
1: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
3: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
2: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
3: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
1: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
2: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
1: आइए वेट से आगे का सोचें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
6: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: One station,
2: 100 FM.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।

0: फायदा दे।
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM
4: 100 पाकिस्तान।
5: अजान जहर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
6: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। लाहौर और उसके मजाफात में नमाज जुहर का वक्त हो गया है।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशादे बारी ताला है और उस रोज अमाल का तुलना बरहक है, तो जिन लोगों की तोले भारी होंगी वो तो कामयाब हैं और जिनकी तोले हल्की होंगी तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, इसलिए कि हमारी आयतों के बारे में बेइंसाफी करते थे और हम ही ने जमीन में तुम्हारा ठिकाना बनाया और उसमें तुम्हारे लिए अजबाब मईशत पैदा किए मगर तुम कम ही शुक्र करते हो। सूरह आराफ।
2: FM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Dastacular.

0: السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم ایف ایم 100 لاہور ریڈیو اسٹیشن سے جتنے بھی سننے والے سامعین ہیں، آپ سن رہے ہیں ہم لائیو، ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پر، اور آج کے آپ کے لیے بہت زبردست ایزی ڈے کے ساتھ بات ہونے جا رہی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی بات ہوگی جی ایزی ڈے کے ساتھ ویریک فارماسیوٹیکل کے تعاون سے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عباس شاہ جو کہ ایم بی بی ایس ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، ایم اے سی سی یو ایس اے ایم بی کارڈیالوجی اسپیشلسٹ رجسٹرار ہیں، کارڈیالوجی ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہاسپٹل سرگودا، شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں عباس میڈیکل اینڈ رجوا چوک نیئر امیا مسجد بلال جنگ روڈ چنور۔ ہائپر ٹینشن مینجمنٹ کی بات ہونے جا رہی ہے وتھ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن سے، پہلے تو سر کو کہیں گے خوش آمد سر، کیسے ہیں؟
1: الحمد للہ بہت شکریہ جی،
0: تھینک یو۔ ہمیں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو کہ ہائی بلڈ پریشر اور بلڈ پریشر میں کیا فرق ہے۔ نارملی بلڈ پریشر ہم کہتے ہیں جی اس کو بلڈ پریشر ہے، تو ہائی بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے؟
1: جی بلڈ پریشر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی خون کی نالیاں ہیں ان کے اوپر جو آپ کا بلڈ ہے وہ پریشر ڈال رہا ہوتا ہے دیواروں کے اوپر، اسے ہم کہتے ہیں یہ بلڈ پریشر ہے۔ پھر نارمل ہے وہ 120/80 ہوتا ہے، یعنی اوپر والا بلڈ پریشر 120 اور نیچے والا جو ہے جس کو ڈائسٹولک کہتے ہیں وہ 80 ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا بلڈ پریشر 130/80 سے زیادہ پرسسٹنٹ رہ رہا ہے، یعنی مسلسل آپ کا بلڈ پریشر 130/80 سے زیادہ آ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ اسٹیج 1 ہائپر ٹینشن ہے۔ اگر 140/90 سے زیادہ ہے تو اسے کہتے ہیں جی سٹیج 2 ہائپر ٹینشن ہے، یعنی کہ بلڈ پریشر ہم سب کا ہوتا ہے، اگر وہ ایک لیمٹ سے زیادہ رہ رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی سے بلڈ پریشر ہو گیا، یا اسے ہم کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر ہو گیا۔
0: اچھا بہت زبردست، اور ڈاکٹر محمد عباس شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سن رہے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی بات یعنی ایزی ڈے کے ساتھ، اور یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جی بیرک فارماسیوٹیکل کے تعاون سے۔ ہائی بلڈ پریشر کی بات ہوگی اینڈ ہائپر ٹینشن مینجمنٹ وتھ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن، ہمارے سننے والوں کو بتاتے چلے جائیں کہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ خون کی نالیاں جس پر پریشر زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس لیے اس کو ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اچھا سر، ہائی بلڈ پریشر کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں اور ایک آدمی اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟
1: جی بلڈ پریشر کی جو ہے بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے کسی فیملی کے اندر جو ہے بلڈ پریشر زیادہ رہ رہا ہے اس ہم کہتے ہیں یہ پرائمری ایفیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی بیماریاں جیسے ڈائبٹیز ہے یا گردوں کی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ ویٹ ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، کولیسٹرول زیادہ ہونے کی وجہ سے، نمک کی مقدار زیادہ لینے سے، فاسٹ فوڈ بیکری آئٹم کا بہت زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، سیڈینٹری لائف اسٹائل کی وجہ سے، آپ کی جو واک ہے یا ایکسرسائز ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس کی وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایج زیادہ جیسے ہوتی جاتی ہے اس سے بلڈ پریشر زیادہ بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ جو آپ کی دیواریں ہیں نالیاں ہیں آپ کی خون کی وہ کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، نمک کی مقدار آپ خود کم کر سکتے ہیں، موٹاپا کم کر سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں، ایکسرسائز کر سکتے ہیں، بیکری آئٹم فاسٹ فوڈ سے آپ پرہیز کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں اگر ان کے اوپر عمل کیا جائے، ساتھ اگر آپ کو گردوں کی بیماری ہے یا اگر آپ کو شوگر ہے اگر آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے اس کو نارمل کیا جا سکتا ہے۔
0: اچھا بہت زبردست جی، اور بلڈ پریشر کی بات ہو رہی ہے ایزی ڈے کے ساتھ ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عباس شاہ، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بلڈ پریشر کا جو شکار ہے کیا صرف بڑی عمر کے لوگ ہیں سر، یا پھر اس میں کوئی بھی عمر کے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں؟
1: اس میں جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی عمر کے لوگ ہوں۔ پاکستان کے اندر جو اسٹیپ ٹرائل ہوا تھا 2013 کے اندر، اس کے اندر نوٹ کیا گیا ہے کہ اس کے 18 سال سے لے کے 35 سال تک کے لوگ بھی موجود تھے، اور بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ تقریباً 17 سے 20% لوگوں کے اندر بلڈ پریشر زیادہ آ رہا تھا، ہائپر ٹینشن آ رہی تھی۔ اس کی یہ وجہ جو آپ کو وجوہات بتائی ہیں، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال ہے، سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، لیک آف سلیپ، سوشل میڈیا، موبائل کا بہت زیادہ استعمال ہے، انگزائٹی سٹریس ہے، ملٹیپل وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ ینگ ایج کے اندر بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔
0: اچھا یعنی کہ اب بڑے عمر کے لوگوں کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف ان کو ہائی بلڈ پریشر ہے، اب ہر ایج جو ہے وہ بلڈ پریشر کا شکار ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی وجوہات آپ نے بتائی ہیں کہ ڈائبیٹک بھی ہو سکتے ہیں، شوگر بھی، ویٹ، نمک، اور اس کے علاوہ سیڈنٹری لائف اسٹائل یعنی کہ لیک آف سلیپ، اگر آپ کم سوتے ہیں، آج کل جتنے بھی ہمارے ینگ جنریشن ہیں وہ تو بہت کم سوتے ہیں سر، پھر ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
1: میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سنت پہ عمل کریں، عشاء کے بعد موبائل چھپا دیں اپنا، کیونکہ اگر موبائل ہاتھ میں رہے گا تو نیند نہیں آئے گی، کیونکہ یہ موبائل سوشل میڈیا اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، اس میں آپ کو اس طرح کے بڑھتے ہیں کہ آپ موبائل چھوڑ نہیں پاتے ہیں۔ یہ کہوں گا کہ آپ موبائل کا کم سے کم کریں، ضرور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اس کا ایک ٹائم سپیسیفک کریں، اس ٹائم یہ سونے کا ٹائم ہے، یہ کھانے کا ٹائم ہے، अगर चीजें सारी आप बैलेंस करके चलते हैं तो ये इससे बहुत ज्यादा फायदे उठा सकते हैं, ना कि नुकसान जिस तरह आजकल हो रहा है।
0: एग्जैक्टली, जबरदस्त। अच्छा सर, क्या अच्छी और मुतवाजन गजा जो है वो रोजाना वर्जिश करने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है?
1: जी बिल्कुल, ऐसे ही है, क्योंकि अगर आप नमक की मिकदार मुनासिब रखते हैं, 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं और एक वीक में 150 मिनट पर वीक अगर आप वॉक कर रहे हैं और अपनी जिंदगी में बेकरी आइटम फास्ट फूड को निकाल देते हैं या मिनिमाइज कर देते हैं और बाकी वेजिटेबल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, नट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नेचर के करीब आ जाते हैं, जितनी ज्यादा नेचुरल चीजें आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप देखें अगर आप 20-25 साल 30 साल पाकिस्तान में देसी खुराक का रिवाज था तो आपको इक्का दुक्का फैमिली में ब्लड प्रेशर का मरीज मिलता था। अब हर घर में अगर 5 अफराद हैं तो 2 लोगों को लाजमी ब्लड प्रेशर है और इसकी एक अहम वजह है वो डाइट है।
0: बिल्कुल है,
1: क्योंकि जो आप खाएंगे डाइट आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी है, यानी कि जो जैसी ईंटें लगाएंगे वैसी ही आपकी बिल्डिंग बनेगी, तो जो आप खाएंगे साफ जरा जिस्म रिस्पॉन्स देगा।
0: बहुत खूब, बहुत जबरदस्त बात की है डॉक्टर मोहम्मद अब्बास शाह ने कि जैसी ईंटें लगाएंगे वैसी ही आपकी इमारत जो है वो होगी। अगर आप अपनी बुनियाद को अच्छा रखेंगे, बिल्कुल नेचर के करीब रहेंगे, तो आपकी बॉडी में मेरे ख्याल में ब्लड प्रेशर का जो है वो नहीं हो सकता आना जाना। और अगर हम दीवारें कमजोर रखेंगे, अपनी बिल्डिंग को, बॉडी की बिल्डिंग को बहुत कमजोर रखेंगे, तो मेरे ख्याल में हर बीमारी आ सकती है। इज दैट राइट डॉक्टर साहब?
1: जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
0: वेरी फार्मास्यूटिकल किताबों से आप लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। इजी डे के साथ हाई ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, इजी डे के साथ हाइपरटेंशन मैनेजमेंट विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अच्छा, अगर किसी को सर हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो वो क्या करे?
1: अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो सबसे पहले परेशान होने की जरूरत नहीं है।
0: अच्छा,
1: ठीक है, उस परेशानी से और ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपने उसकी वजूहत तलाश करनी है। अगर आपका वेट से आता है अपना वेट कम करें, अगर ये अपना लाइफ स्टाइल चेंजेस, अगर आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, अपनी स्लीप ठीक करें, स्ट्रेस लेवल अपना कम करें, नमक की मिकदार कम करें और अपनी सेल्फ असेसमेंट करें कि मुझे क्यों ब्लड प्रेशर हो रहा है। अगर मिसाल मुझे साल पहले नहीं था या 6 महीने पहले नहीं था ब्लड प्रेशर, तो अभी क्यों हो गया? क्या मेरा वजन बढ़ गया है, क्या खाना शुरू कर दिया है, मेरा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ है, मेरी कोई जॉब की डिस्टर्ब, साइकोलॉजिकली को डिस्टर्ब हो गया हूँ, जो वजूहत हैं उनको तलाश करें और उनके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी आपने अद्वियात इस्तेमाल करनी है, वजूहत अपने अगर आप खत्म कर लेते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, थायराइड, फैटी लीवर, ये सारी आपकी लाइफस्टाइल ठीक ना होने की वजह से बीमारियां हैं। अगर आप लाइफस्टाइल अपना ठीक कर लेते हैं तो ये सारी बीमारियां यकीन करें जड़ से खत्म हो सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई मरीज हैं जिनके मैंने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खुद के तजर्बे करता रहता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, लाइफस्टाइल चेंजेस से आपकी जिंदगी 180 डिग्री के एंगल में चेंज हो सकती है।
0: दैट्स वंडरफुल, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम सुन रहे हैं आप लोग। डॉक्टर मोहम्मद अब्बास शाह हमारे साथ मौजूद हैं और हाई ब्लड प्रेशर की बात हो रही है जी, इजी डे के साथ हो रही है, वरिक फार्मास्यूटिकल किताबों से आप लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं जी, हाइपरटेंशन मैनेजमेंट विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सर से पूछते हैं कि अगर जैसा कि आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, रियल लाइफ से भी दिए हैं, तो सर अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इन सारी चीजों को कंसीडर नहीं करते, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इसके क्या नुकसान हैं, ये भी हमारे सुनने वालों को बताइए।
1: ब्लड प्रेशर जो है इसके, देखिए ना आप, यानी खून की नालियों के अंदर जो है वो प्रेशर ज्यादा हो गया, तो आपको पता है आपके दिमाग में भी खून की नालियां हैं, आपकी आंखों में भी खून की नालियां हैं, आपके दिल में भी खून की नालियां हैं, आपके गुर्दों में भी खून की नालियां हैं, तो जहां जहां पे खून की नालियां हैं वहां वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। दिमाग की नालियों में प्रेशर ज्यादा होगा, आंखों में प्रेशर ज्यादा होगा, रेटिनोपैथी हो सकती है, काला मोतिया हो सकता है, दिल में ज्यादा होगा तो हार्ट अटैक हो सकता है, दिल होगा तो गुर्दे खराब हो सकते हैं, गुर्दे ऊपर खिंचाव डालेगा तो पट्टी कमजोर हो सकते हैं, बहुत सारी, यानी कि समझ लें कि सर से पांव तक आपके हर बॉडी पार्ट के ऊपर जो है ब्लड प्रेशर के इफेक्ट्स हैं।
0: दैट्स वंडरफुल सर, आपने बहुत, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर मोहम्मद अब्बास शाह ने बहुत खूबसूरत तरीके से हमें समझाया है। मेरे ख्याल में
1: ब्लड प्रेशर जो है ये आपके किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ता, आपकी आंखों से लेके दिल, आपके गुर्दे, आपका दिमाग, ये हर चीज को नुकसान दे सकता है। तो ब्लड प्रेशर जो है इसको कोई आम बीमारी ना समझा जाए, ये बहुत सारी और बीमारियों की वजह बन सकता है। जैसे कि मैं कार्डियोलॉजी में होता हूँ, तो हम जब भी हमारे पास हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो हम पहले ये पूछते हैं आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, आप स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, जो है कोलेस्ट्रॉल तो नहीं, तो यही 4-5 वजूहत है जो हार्ट अटैक या दिल फेल करवा रही है। पहले नंबर पे हम हमेशा ब्लड प्रेशर का पूछते हैं और पहले चेक भी ब्लड, इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि इनके दिल का जो अटैक हुआ है उसके पीछे वजह क्या है। वाले टॉप ऑफ द लिस्ट हमारा ब्लड प्रेशर होता है.
0: बहुत बहुत जबरदस्त डॉक्टर मोहम्मद अब्बास शाह ने बहुत जबरदस्त तरीके से हमें बहुत ही जिसे कहते हैं क्लोज रियल लाइफ टू क्लोज उन्होंने एग्जांपल दी कि खून की नालियां आपकी बॉडी में हर जगह भर रहे हैं और जहां जहां खून का प्रेशर ज्यादा होगा वहां वहां खून का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वहां पर डैमेजेस हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, जिसमें दिल गुर्दे आंखें जो है वो बिल्कुल नंबर वन पे है. बहुत बहुत अच्छे तरीके से हमें आपने एग्जांपल दिया. मेरे ख्याल में सर जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं फेसबुक पे वाया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एंड वाया वेरिक फार्मास्यूटिकल किताबों से एंड प्लस डॉक्टर मोहम्मद अब्बास शाह की जो है वो रेफरेंस है, अगर जो भी कोई देखेगा मेरे ख्याल में ये बहुत ही बड़ी सबका जारिया है एंड दैट्स वंडरफुल. ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी सर आपने, बहुत आसान और फहम तरीके से आपने समझाया. अच्छा सर हमें ये बताएं कि क्या सिर्फ ब्लड प्रेशर को दवाइयों से हल किया जा सकता है या इसको बिना दवाइयों के भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं?
1: जी इसमें देखें नीचे अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है, अगर आपका ब्लड प्रेशर 180 आ रहा है, 170 आ रहा है, 200 आ रहा है और साथ आपको सीने में दर्द हो रही है या आपके छोटे पेशाब में झाग बनना शुरू हो गई है या आपके हाथ पांव जो है वो सुन्न होना स्टार्ट हो गए हैं, पांव में सोजिश, इसके मतलब ब्लड प्रेशर ने अपने असरात शुरू कर दिए हैं. तो वो जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको रिवर्स करने के लिए फौरी आपको मेडिकेशन स्टार्ट करनी होती है ताकि आप ब्लड प्रेशर को फौरी नॉर्मल कर सकते. ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है फिर आप साल साल वजूहत देखते रहें कि अगर शुगर की वजह से हुआ है शुगर कंट्रोल करें, अगर साल्ट इनटेक ज्यादा है उसको ठीक करें, मोटापा है उसको ठीक करें, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है उसको ठीक करें. तो जो आपने ये लिस्ट बनाया जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर हो रहा है, अगर आप उन वजूहत को खत्म कर लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरी जिंदगी के लिए दवाई खानी पड़े. उसके हम डोज आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं. मेरी ये आदत है कि जब पेशेंट आता है मैं उसको पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का बताता हूँ, फिर उसको कम से कम मैं दवाई शुरू करता हूँ. और यानी कि 50 मिलीग्राम की टेबलेट आपने ले ली, जैसे इजी डे की बात हो रही है 50 मिलीग्राम इजी डे आप दे रहे हैं और आपका पेशेंट जो है वो एक हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद आता है उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है. अच्छा। तो बजाय फ्री दवाई बंद करने के आप उसके डोज कम करेंगे, 50 मिलीग्राम से आप 25 मिलीग्राम पे आ जाएंगे, इनको डोज आहिस्ता आहिस्ता आप कम करते जाएंगे. डोज के साथ अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक रह रहा है, उसने अपना लाइफ स्टाइल ठीक कर लिया है, तो कई मरीजों को मैं तो दवाई छुड़वा भी दी है. मेरे कई ऐसे पेशेंट 80-90 kg, 100 kg, उन्होंने 10-10 kg वेट कम किया है और 1 kg वेट कम करने से 2 मरकरी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. जब उन्होंने वजूहत खत्म करनी है तो फिर मैं क्यों दवाई लेना दूसरा, जब उनका बीपी ठीक रहने लग जाता है तो मैं उनकी दवाई बंद कर देता हूँ. लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है. अगर पेशेंट है जिसको ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक हो गया है, उसको फालिज हो गया है, चीजों में हमें जो ब्लड प्रेशर की दवाई है वो प्रिवेंशन के लिए देनी पड़ती है ताकि दोबारा फालिज ना हो या दोबारा हार्ट अटैक ना हो. यंग पेशेंट है 20-22 साल का, अब उसको तो साफ जरा लॉन्ग टर्म दवाई दी हमने,
0: लाइफ स्टाइल ठीक करके मेडिसिन हमने. तो बड़ी जबरदस्त आपने बात सुनाई हमारी ऑडियंस को और जितने भी हमारे सुनने और देखने वाले हैं कि बिल्कुल दवाइयां जो है वो बिल्कुल खत्म हो सकती है विद द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन. बिकॉज हमारा अगला क्वेश्चन ही आपसे ये है कि जो आपने डॉक्टर साहब आपने कहा है कि मैंने उनको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से उनकी मेडिसिन जो है वो बिल्कुल खत्म करवा दी एंड ये वेरी करता है हर बॉडी नेचर पे, हर इंसान के साथ ये नहीं हो सकता कि वो दवाइयां खत्म करें. हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि हम लोग दवाई समझते ही नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर की जो है वो दवाई भी है. 100% जो हमारे यहाँ लोग हैं वो यही समझते हैं कि ये खुद ही हो गया और खुद ही सही हो जाएगा. बट सर हमें ये बताएं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से आपका क्या मुराद है?
1: लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से मुराद है कि आपकी ऐसी आदत जिसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर दिल के ऊपर इफेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे अगर आप रात को लेट सो रहे हैं, अगर आप अभी खाने की रूटीन ठीक नहीं है, फास्ट फूड बेकरी आइटम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आप वॉक नहीं कर रहे, आप ऑफिस में चेयर पे बैठे रहते हैं, आप जिम नहीं जा रहे हैं, पानी की मकदार बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, इसके अलावा आप जो है अननेसेसरी जो है डिस्कशंस कर रहे हैं, ऐसी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, और खाने पीने की रूटीन आपकी ठीक नहीं है, तो ये सारी आदत अगर अपनी आप ठीक कर लेते हैं तो इन्हों को हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं. डेली बेस पे आप चीजें कर रहे हैं. अच्छा। जैसे अगर अपनी मैं आपको रूटीन बताऊं, मैं तकरीबन 7 kg वेट कम किया है. मैं कोशिश कर रहा था बीपीएल वॉक के जरिए करूं, लेकिन रूटीन ऐसी है सुबह स्वीटर शाम को मैंने फिर लाइफस्टाइल चेंजेस अपने की, मतलब मैं सुबह 2 अंडे खाता हूं नाश्ते में बस, दोपहर को 1 रोटी, रात को थोड़ा सा सलाद बस. तो यानी कि मैंने क्योंकि टाइम नहीं था जिम का एक्सरसाइज का, तो मैंने अपनी जो डाइट है वो मिनिमाइज करके सिर्फ जो नेचुरल चीजें हैं नेचुरल चीजें हैं उसको इस्तेमाल कर रही है, बेकरी आइटम, फास्ट फूड, जो फ्री वाले बर्गर मिलते हैं हॉस्पिटल से वो भी खत्म कर दिए, तो मैंने नहीं खाने.
0: That's wonderful.

0: शुक्रिया फिर 100 का बहुत शुक्रिया कि इस तरह के जबरदस्त प्रोग्राम यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं और अवाम उन्नास की मालूमात के लिए। एंड सर आगे बढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि हमें तो समझ नहीं आ रही टाइम कैसे गुजर रहा है जल्दी जल्दी। सो मैं समझ रही हूँ कि हम सारे आपसे सारी जो आपकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो हम ग्रैब कर ले, और हमारे जितने भी सुनने वाले लिसनर है ना, जितने उन्हें मरीज भी हो सकते हैं। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में जो इसकी शराह है वो किस तरह से बढ़ रही है, क्योंकि ये प्रोग्राम तो हर किसी के लिए बहुत अहम होगा।
1: पाकिस्तान के अंदर जो है अभी स्टेप ट्रायल हुआ, रिसेंट में पढ़ रहा था, उसमें 37% जो लोग हैं का शिकार है, 37%,
2: और उससे भी ज्यादा जो 37% से 50% को इस बात का इल्म ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ब्लड प्रेशर इज अ सिंपल लेफ्ट डिजीज, इसकी कोई अलामत नहीं होती, इसलिए ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल भी कहा जाता है। खामोश कातिल है ना, वो आराम से आएगा और तमाम कर देगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। ब्लड प्रेशर भी इसी तरह से कोई प्रेशर हमेशा आप चेक करने से पता चलता है आपका ब्लड प्रेशर हाई है। ये गलत फहमी है कि कुछ मरीज हमको सर दर्द हो रही है, थकावट हो रही है, वो बीपी चेक करते हैं, हमको बीपी थोड़ा उसका नॉर्मल भी आ जाता है, तो उसको रिलेट करते हैं कि ये मुझे ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है। अक्सर आप उस स्ट्रेस की वजह से ब्लड हुआ होगा, आप बीपी चेक करेंगे तो आपका नॉर्मल आया, अगर आप आपको सर में दर्द हो रहा है आप बीपी चेक, हर सर दर्द जो है उसकी वजह ब्लड प्रेशर नहीं है, परेशानी होती है, थकावट हो सकती है, तो ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं है, ब्लड प्रेशर आपको चेक करने से। और 50% लोग जो है नहीं है उनको ब्लड प्रेशर है, अक्सर हमारे पास वीको कराने आते हैं, उसमें पता चलता है कि प्रेशर ही हार्ट अटैक के साथ आ रहा होता है, उसको चेक करते हैं बीपी 200 पे पहुंचा होता है, लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं।
0: सर मैं आपकी बात से 100% एग्रीड करती हूँ, और मेरे ख्याल में ये जो प्रोग्राम कंडक्ट किए जा रहे हैं इनका मकसद भी यही है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग ये तस्लीम करने को रेडी नहीं है। पिछले दिनों में बहुत से लोगों से मिलना हुआ, उनकी डेथ हो गई, बट वो दे से डेट कि हमें कोई ब्लड प्रेशर नहीं है बट अटैक हो गया। लोग ये तस्लीम करने को एग्रीड ही नहीं है कि भाई ब्लड प्रेशर भी कोई चीज है, क्योंकि इसके सिम्टम्स नहीं है,
1: सिम्टम नहीं एक्सेप्ट नहीं करता ये चीज मुझे है, जब हो जाती है तो फिर तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है।
0: एग्जैक्टली सर, हमारा सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि अगर आम इंसान को हाई ब्लड प्रेशर का आर्जा लाहक हो जाएगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि दूसरे अल्फाज में इसकी अलामत क्या होंगी। सो वी आर डिस्कसिंग दिस कि इसकी कोई अलामत नहीं है,
1: ब्लड प्रेशर जो है इसकी कोई अलामत नहीं है, ये आपको जब चेक करवाएंगे उससे पता चलेगा कि जब आप बीपी चेक करवाते हैं और मुसलसल आपका कम अज कम 10 में से 8 रीडिंग अगर ज्यादा आ रहे हैं फिर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। अब ऐसा ना हो परेशान है और क्लिनिक पे आप गए आपका बीपी 140-150 के ऊपर है, तो कभी भी आपने जिसका फर्स्ट टाइम ब्लड प्रेशर ज्यादा कभी भी उसको फौरी दवाई शुरू नहीं करती, आपने देखना है 2-3 दफा 4 दफा ब्लड प्रेशर चेक करें, अगर तो मुसलसल ब्लड प्रेशर ज्यादा उसका आ रहा है फिर आपने उसको हाइपरटेंशन की दवाई, क्योंकि मैं तो पहले जो पहला विजिट होता है पेशेंट को मैं हाइपरटेंशन की दवाई देता ही नहीं है, मैं पहले भी उसकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आप ये खाएं, ये एक वीक सारे चीजों की परहेज करता है, नमक की परहेज भी करता है, एक्सरसाइज करता है, वॉक करता है, पानी ज्यादा इस्तेमाल करता है, टाइम पे सोता है, टाइम पे जागता है, अगर उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है मैं उसको दवाई नहीं शुरू करता कभी भी। आपने पहली दफा फ्रॉड नहीं करनी, खासतौर पर यंग लोगों के अंदर, तो ब्लड प्रेशर की दवाइयों को अपने इसलिए आप पहले ब्लड प्रेशर का कंफर्म करें तो उसको है कि नहीं है, और उसकी सुबह शाम वैल्यूज चेक करें, और कम अज कम 5 दिन की मॉनिटरिंग करें, अगर आप 5 दिन 10 दफा चेक करेंगे, अगर उसमें से 8 दफा से ज्यादा ब्लड प्रेशर ज्यादा आया हुआ है, 130 से ज्यादा आया हुआ है, एज के हिसाब से होता है, अगर 40 से कम है तो उसमें 130-80 आपने बेसलाइन लेनी होती है, अगर आपकी एज 50 से ऊपर है तो आपने 130 नॉर्मल लेना है, आपको आप हाइपरटेंशन काउंट करेंगे, क्योंकि एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है थोड़ा सा ब्लड प्रेशर आपका ऊपर की तरफ ही आता है, तो 50 साल के बंदे का 140 देख के या 135 देख के उसको और ही आपने डबल डोज दवाइयों की शुरू नहीं करते, नहीं
0: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद अब्बास शाह साहब, अगर हमारी आवाम जितनी भी सुन रही है वो अगर आपकी बातों से मोटिवेट होती है, वो आपको मिलना चाहते हैं, आपको कहीं पर विजिट करना चाहते हैं, बिकॉज आई रियली अप्रिशिएटेड योर ड्यूटी कि आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि आप सबसे पहले जो है वो दवाइयां स्टार्ट नहीं करते, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाते हैं, पर जितने भी सुनने वाले हैं क्या फिर वो हमें चिन्ह

ocean of music and splashes of sound. SM100 Pakistan.

No DJ, DJ. Here they are. Just music to make you rock.

0: पे फायदा दे।
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
4: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
7: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
8: एंड
9: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट
10: आसान, महफूज और मुनाफा।
7: एंड
11: पे पार्क आज ही अपने बैंक से बनवाए।

मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: बेबाक, आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

मैं तुमसे तुम्हारे ख्वाब नहीं छीन सकता। I know what you want, मगर मैं फौज नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि फौज मेरे खून में शामिल है। अगर फौज छोड़ दूंगा तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: FM
2: 100। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
3: आजान मगरिब पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में नमाज मगरिब का वक्त हो गया है।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM
2: 100। इरशाद बारी ताला है, सुन रखो कि जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे, यानी वो जो ईमान लाए और परहेजगार रहे, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी बिशारत है और आखिरत में भी। अल्लाह की बातें बदलती नहीं, यही तो बड़ी कामयाबी है। सूरह यूनुस।
1: FM 100।

0: फायदा दे।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा दे।
1: 100.1 FM, your location for maximum music.
2: FM 100, the music power.

0: मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा दे।
1: 100.1 FM, your location for maximum music. This is

0: बैटरी पर एतबार, नो पानी नो परेशानी।
1: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
2: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
1: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
3: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
2: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
1: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
3: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
2: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
3: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
1: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
2: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
1: आइए वेट से आगे का सोचें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डोंट गो इनसाइड, यू शुड हैव कम। दिस अक्टूबर Emporium Mall opens its doors to your darkest fears. Enter the Halloween experience from 8th October to 22nd November. Rupees 900 per person, or bring the whole family, for rupees 3000, and shop, eat and play for rupees 30,000, and your entry is free. But once you enter, can you make it out?
5: पेपा कार्ड है
6: तो फायदा है।

0: बेबाक, आज ही अपने बैंक से बनवाए।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए, देखा ना, मिरेकल्स हैपन।
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
3: ब्रेस्ट कैंसर से महफूज सेहतमंद पंजाब, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। ब्रेस्ट कैंसर एक मोहलिक मर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीन तरीका इलाज का पंजाब में बाज़ाब्ता आगाज।
4: बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। 60 मिनट से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की, कन्वेंशनल सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती।
3: छाती के साइज या रंगत में गैर मामूली तब्दीली या निपल से दूध के अलावा रुतूबत या खून का इखराज ब्रेस्ट कैंसर की बड़ी अलामत हैं। ब्रेस्ट कैंसर की बड़वक्त तशखीस से मरीज के बचने के इम्कानात 90% तक बढ़ जाते हैं। 40 साल से कम उम्र की खवातीन अपना मुआयना बाकायदगी से करें और 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से मुआयने के साथ हर साल मेमोग्राफी भी लाजमी करवाएं। हुकूमत पंजाब।
5: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: किसने कहा था पैसे बचा?

0: नंबर, मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा दे।
1: 100.1 FM, your location for maximum music.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: सबसे अच्छा अच्छा सबसे प्यारा FM 100 हमारा
1: तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम तम
2: जिंदगी और मौत का सवाल बार बार मेरे जहन में गर्दिश करता है। क्या किस्मत की तमाम ठोकरें सिर्फ मेरे लिए ही बनाई गई हैं? क्या किस्मत के तमाम चक्रों की गर्दिश खत्म कर देना ही जौहर-ए-मर्दानगी है?

करने की। योर लाइफ योर म्यूजिक योर चॉइस वी प्ले इट ऑल। शो योर प्राइड नेशन वाइड FM 100 पाकिस्तान।

0: टेंशन कई को लेता जानी, सब मिलेगा सब मिलेगा।
1: कर में खड़ी है किस्मत लेके नोट सारे।

0: बैटरी पर एतबार, नो पानी नो परेशानी।
1: नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन जिसमें है 100 तोला गोल्ड। बस बॉटल को स्कैन करो, स्क्रैच करो और यूनिक कोड को एंटर करके लो 100 तोले गोल्ड जीतने का मौका। नया पॉन्ड्स बॉडी लोशन, स्किन और किस्मत दोनों चमकाए। देखा ना, मिरेकल्स हैपन।

Splashes of sound. SM 100 Pakistan.

0: is no other station like 100 FM.
1: तो जब भी बोल तू बोल रे बंदे पहले उनको तोल जब भी बोल तू बोल रे बंदे पहले उनको तोल क्योंकि वो बहुत अनमोल है लेकिन बोल ही खोले बोल
2: बोल
1: अरे बोलने वाले दाना है तो बोल बड़े ना बोल।

آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. FM 100.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। सुबह की नशियात में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अब आप FM 100 से सुनेंगे तिलावत कुरान पाक। 11वां सिपारा यातदिरून, तिलावत कौरी वहीद जफर कासमी, तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी, आवाज शमशाद अली खान।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: یعت